साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: अरे जैसे पास पास मंडरा है,
1: है
0: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टर्का
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।

0: Vipin Aneja on lead vocals, joined by A.R. Rahman. Taken from the film Main Wapas Aaunga, Tere Paas Mein. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 7th ऑफ अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ. वी गॉट अ स्पेशल इंटरव्यू दिस आवर. हेड ओवर टू आवर सोशल्स टू सी हु केम एंड पेड अस अ विजिट यस्टरडे. ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दैट इन द फर्स्ट आवर. हंस राज हंस. 07925-702-72 is where you've been sending me beautiful messages. I'm here until midday. Do not stop. Good morning.
1: Back-to-back songs from Cakebox. This Halloween, Cakebox is staying up late. Join Cakebox After Dark, 29th and 30th October. We're open until 9 p.m. with treats, prizes, activities and free samples. Plus, kids get a free Halloween brownie when you spend £10. Cakebox After Dark. Halloween gets sweeter after dark. Terms and conditions apply. While stocks last. Participating stores only.
0: Now, before I look at your WhatsApp messages this hour, imagine walking in and your home is already one step ahead. Lights, heating, blinds, music all set just right from a single tap. That's the quiet luxury of Casavira Home Automation, a home that looks after you, sees to the details and gives you back your time. It sounds like the future, right? But you can see it working today. That's right. Come and try for yourself. Visit the Casavira Experience Center, Unit 129, Clock Tower Road, Industrial Estate, West London, TW76G F gasavira.co.uk. Right, let's look at those good morning messages. Idris and Mum in Hackney, welcome to the show. Dina in Guildford, how are you? Amreen in Karachi sends me 2 pink hearts, or is that 4 pink hearts for that one? Preeti in Crawley, you loved that song too. Syra in Cheltenham, thank you so, so much. Maya in Watford, just in time. Welcome to the show. Now, because I'm going to be chit-chatting with Hans Raj Hans, the legendary Hans Raj Hans, on the other side of the break. Naturally, listener's choice pitched 2 of his most loved songs. Option A, predictably, perhaps his biggest hit. Dil chori sada ho gaya, ki kariye, ki kariye. But in option 2, Hans Raj Hans is joined by his 2 sons, Navraj and Yuvraj. It is this song. Mere nain vich rehnde de. That's your option B. Dil chori sada ho gaya is A. Mere nain vich rehnde is B. What plays next? WhatsApp me. The greatest station, radio
2: station in the world. Sunrise Radio. Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends Return with Himesh Reshammiya starts 17th October only on Sony TV.
1: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy 3 nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel, pay less, enjoy more. Southall Travel, Atoll protected.
3: Dad, where have you been?
4: I went to supermarket, snack shack, chaidasi, big cricket match today on TV and movie afterwards.
3: We had popcorn and crisps, Dad.
4: I'm a desi. I need my Indian snacks. Supermarket with chatwal milia.
3: Uncle Chatwal?
4: Nahi, chatwal de namkeen range. Plain bhujia, alu bhujia, khatta meetha, nimu masala, navratan mix and moong dal. Oye, main full selection chak le aaya.
5: Chatwal's mazedar spicy Indian snacks. Our award-winning great taste of 2026 winners. A brand by SOP International. Now available at major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets. Enjoy with family and friends.
6: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25 kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020-8150-2025 or visit meraboiler.com now. T's and C's apply. Dil Chori Sada Ho Gaya is back. Pepe's Piri Piri presents an unforgettable evening with the king of soulful Punjabi, Hans Raj Hans, live in London. The show on Saturday the 10th of October is at the Sofitel Hotel, London Heathrow. Doors open 6:30 p.m. Book your tickets from Eventbrite. Experience the timeless hits, the magical voice, and an evening full of emotion, nostalgia, and entertainment, supported by Madhus. Hansraj Hans, live at the Sofitel Hotel Heathrow. Don't miss it. Radio partner Sunrise Radio, TV partner Punjab TV. Brought to you by Samara Events UK and Top Notch Studios.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
8: We got it at Selco.
9: There are lots of reasons why the trade choose Selco Builders Warehouse. And if you need timber right now, there are 10,000 reasons. Buy any BSW timber product in October or November and you could win £10,000 in our grand prize draw. Treated timber, contract CLS, skirting or architrave. Buy BSW timber and you could win the cash. Online or in store at your local Selco. Minimum spend and conditions apply.
10: The first time you saw a red squirrel. The beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers. A wrong step in a stream. Muddy trousers. And having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
11: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में. खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
0: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
11: जी बिल्कुल.
12: शबनम इसका जवाब गोल्ड बैंक है.
0: हाँ मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है. गोल्ड बैंक
11: बिल्कुल सही जवाब. अब आखिरी सवाल. गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
0: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है. मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
11: बिल्कुल आप ऑडियंस पूछ ले सकती है.
13: गोल्ड बैंक.
0: मैं ऑडियंस के साथ हूँ. गोल्ड बैंक.
11: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह. बिल्कुल सही जवाब. आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं.
14: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111. goldbank.co.uk.
15: शबनम साही ऑन सनराइज विद सोनी टीवी. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
16: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
0: Good morning, it's 10:17. You're on Sunrise Radio with me, Shabnam Sahi. It gives me great pleasure to say a warm welcome to the legendary Hansraj Hansji, jo ki yahan pe UK mein kai concerts karne aaye hain. He's already had a few packed out fabulously successful gigs. And sabse pehle main apne listeners ko ye yaad dila dun that Hansraj Hansji is going to be performing live at the Sofitel Hotel here in London Heathrow this Saturday on the 10th of October. There are a few tickets remaining. Book them immediately at eventbrite.co.uk. I'd like to say a warm welcome to Hansraj Hansji. Welcome to Sunrise.
17: Thank you ji. Sunrise ka, Tony ji ka, Shabnam ji, aapka specially bahut dhanwad. Thank you. Aapne fir yaad farmaya aur मिस्टर हक का शुक्रगुजार हूँ. संजय जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ. ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं. बिजनेस किसी और लोगों के साथ भी ये करते हैं बहुत सारे इवेंट का, लेकिन मेरे से तो मोहब्बत का रिश्ता है तो कभी कभी बुला लेते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ.
0: आप जितने बार यूके में शो करने आते हैं आपके जो फैंस हैं ना, जो ऑल अक्रॉस द यूके, दे वेट फॉर यू टू कम एंड परफॉर्म लाइव. ये सवाल शायद मैंने आपसे पिछली बार भी किया था कि हाउ डू यू डिसाइड ऑन अ सेट लिस्ट? क्या आप महफिल के रुख को देखकर फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं क्या गाऊंगा या फिर?
17: आर्टिस्ट वही है जो अपने दिल की चिंता ना करे, लोगों के लिए गाए, लोगों को लगे ये मेरे दिल की बात कर रहा है
0: जी।
17: और कौन नहीं चाहता मेरा दिल चोरी हो, हालांकि मेरा दिल चोरी नहीं कोई करता, मैं कोशिश भी करूं, लेकिन हेल्प आउट मैं करता हूं लोगों की, लिसनर्स की, उनके काम के गाने हैं, जैसे दिल चोरी साडा हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं आपां दोवें रुस बैठे तो मनाऊ कौन वे, तो अगर कोई ब्रेकअप हो जाए खुदा ना खास्ता तो कहते हैं कि दिल टूटे टूटे हो गया।
0: बिल्कुल, मतलब हर सिनारियो के लिए आपके पास
17: संगीत और गाना जो है वो वही है जो लोगों के लिए हो, ऑडियंस के लिए हो, हर शख्स को लगे कि ये मेरी बात कर रहा है, मेरे दिल की बात कर रहा है
0: जी। आप इतने सालों से गा रहे हैं, अभी भी आपने अपने फैंस के दिलों में एक इतनी प्यारी सी जगह बना के रखी है, उसका राज क्या है?
17: उसका राज यही है कि ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही कोई बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है।
0: वाह,
17: इतने साल कोई बर्दाश्त करे, इतने साल फिर भी सारे शो सोल्ड आउट हों, तो ये उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे उस्ताद जी का और लोगों की दुआओं का और आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हर बार बहुत उत्साह से आते हैं, मैं देखता हूँ उनके चेहरे के तासर कि उनको कुछ नया भी चाहिए होता है, फिर मैं नया भी पेश कर देता हूँ, फिर कुछ फरमाइशें होती हैं। आई थिंक हंसराज हंस का मतलब है फुल पैकेज
0: जी। बिल्कुल,
17: गजल सुननी, गजल सुनो, सूफी सुनना, सूफी सुनो, एंड पे डांसिंग सॉन्ग तो होते ही हैं, क्योंकि ढोल में हम पंजाबियों की जान फंसी हुई है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यू नो आपके फैंस दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बिकॉज एज यू सेड यू आर अ फुल पैकेज।
17: वर्सेटाइल यानी होना, ये भी अपने आप में खुश नसीबी है
0: जी,
17: वरना एक ही टाइप का ज्यादातर लोग गाते हैं, जहाँ डांसिंग गाएंगे जहाँ कोई और गजल गायक गाएगा, लेकिन आपकी दुआ से मैं जस्टिफाई भी करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं कहूँगा मैं आई एम परफेक्शनिस्ट, पर मैं कोशिश करता हूँ अगर गजल गाऊँ तो लगे कि ये गजल गायक, सूफी गाऊँ तो लगे कि ये रूहानियत है इसमें, मालिक का कोई जिक्र हो रहा है, तो अगर जिक्र हो रहा है तो कहीं जुड़ भी जाए, कनेक्ट भी हो जाए, अगर डांसिंग है तो फिर लगे कि जिदा पंजाबी जी कहते धूड़ा पट दे
0: जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, परफेक्शन तो जो है वी ऑल एस्पायर टू परफेक्शन, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है ही इज ऑलवेज अ स्टूडेंट,
17: करते रहना चाहिए जी। सुर और लय में परफेक्ट बंदा तो जितने भी बड़े लोगों को मैंने सुना है उन्होंने समुन्द्र से ही तशबीह दी है संगीत की, तो अगर इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं तो मैं तो अपने आप को एक अदना सा म्यूजिक का सीकर कह लें, स्टूडेंट कह लें, बस प्रचारक कह लें, और इसके जरिए ये है कि पूरी दुनिया में लव एंड पीस का मैसेज देने में मैं कामयाब हूँ
0: जी। बिल्कुल,
17: बॉर्डर्स पे जाके भी, हर कंट्री में जाके भी मेरा मिशन होता है मोहब्बत का पैगाम दूं, क्योंकि तकलीफ होती है एहसासमंद आदमी को जब अननेसेसरली लोग जंगों के जरिए मारे जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं क्यों, भाई भाई का दुश्मन है, मजहब मजहब का, मुल्क मुल्क का दुश्मन बना हुआ है, ये पता नहीं क्यों, कब इंसान को ये समझ आएगी कि मालिक ने हमें पैराडाइज बना के दिया था, हम और प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं, वहां जिंदगी ढूंढ रहे हैं, जो दिया है मालिक ने उसको दोजख बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं आपस में लड़ झगड़ के।
0: Music is a universal language that binds people, that brings people together. We all feel the same emotions when the songs appeal to our heart.
17: Entertainment तो होती है
0: जी, बिल्कुल,
17: लेकिन अगर इस बहाने से आप कोई अच्छा मैसेज दे दें सोसाइटी को, कम से कम फिर आप गिल्टी नहीं है कि मैंने ड्यूटी नहीं की
0: जी।
17: वरना पैसे कमाए, तालियां उगरा ली, सीटियां बजा ली, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैसेज ऑफ लव एंड पीस इसके थ्रू जरूर दो।
0: विच इज द रीजन योर फैंस लव यू सो मच। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द लेजेंडरी हंसराज हंस जी। ही इज परफॉर्मिंग लाइव एट द सोफिटल होटल इन लंदन हीथ्रो दिस सैटरडे ऑन द 10th ऑफ अक्टूबर। प्लीज गेट योर टिकट्स नाउ एट eventbrite.co.uk। हंसराज हंस जी, आई कैन आस्क योर फैंस, अर्ज योर फैंस टू गो एंड अटेंड द कॉन्सर्ट बिकॉज दे नो हाउ स्पेशल दिस इज गोइंग टू बी, लेकिन आप अपनी बोली में, इन योर ओन ब्यूटिफुल स्टाइल, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर काउंटलेस फैंस जो आपको इस वक्त सनराइज पर लाइव सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
17: मैं यही कहूंगा कि हमेशा आप खुश रहो, और कहते हैं ना कि अगर फूलों को जुबान होती तो वो भी सात सुरों की मौसीकी में बात करते। जिंदगी अगर सुखद करनी है, पीसफुल करनी है, तो संगीत से जुड़े रहो। संगीत से जुड़ोगे तो क्रिएटर से जुड़ोगे, क्रिएटर से जुड़ोगे तो पीसफुली ये जिंदगी का सफर, वी आर ट्रैवलर, वी आर नॉट रेजिडेंट हियर, इसमें ट्रैवलिंग थोड़ी एंजॉयफुली हो जाएगी, वरना फिर वो है ना कि आदत ही बना ली है तूने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना।
0: वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
17: वेलकम शबनम जी, एक बार फिर मैं आपका और सनराइज का शुक्रगुजार हूं, और संजय भैया का जो हमें सबको सपोर्ट करते हैं, हक सच बर हक का भी
0: जी। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी सक्सेसफुल टूर, और सनराइज में दोबारा आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।
17: सनराइज पे आए बिना तो गुजारा ही नहीं है, मैं तो अवतार पाजी के टाइम का हूँ, जब लाइसेंस भी नहीं मिला था तब से मैं लगा हुआ हूँ सनराइज, ये कोई कंसर्न है मेरा, भाई साहब के साथ बहुत प्यार था, आगे टोनी ने भी ऐसा ही दिया, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे भाई की ये निशानी है सनराइज और टोनी,
0: ये रिश्ता ऐसा ही कायम रहे, मे दिस रिलेशनशिप कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लरिश। थैंक यू सो मच,
17: थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।
18: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
19: Hello UK Waro, Big Boss is back, aur is baar ghar walon ko milega ek nahi two chance. Big Boss only on Colors.
20: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: A warm and wonderful human being, a phenomenal performer. Hans Raj Hans, joined by his sons Navraj Hans and Yuvraj Hans for this one. The winner, this hour. Enjoy.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
4: मिस्टर खान्स शेरो शायरी अराइव्स जस्ट इन टाइम. आप अर्ज करते हैं, हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें. हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें. अभी गुरूर में बैठे हैं वो कि उनके चाहने वाले बहुत हैं. दूसरा शेर है, नींद में भी गिरते हैं आंखों से आंसू. ओह डियर, नींद में भी गिरते हैं आंखों से आंसू, ख्वाबों में भी तुम मेरा हाथ छोड़ देते हो. ओह डियर डियर डियर.

0: पार्टी शुरू हुई है
1: बादशाह आज तक गिल अभी तो पार्टी शुरू हुई है फ्रॉम द फिल्म खूबसूरत Right, that's it. First hour gone. Can't believe it.
0: Jisko dance nahi karna, wo jaake apni bhas
1: chala. It's news time.
2: Celebrating 36 years of excellence.
3: Sunrise and music.
2: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
3: Sunrise Radio.
2: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Hey, did you know Pepe's has launched merch? So many items to order. Check it out. merch.pepes.co.uk. Newer Pepe's are the Pepe's Melts. Flame grilled flavor. Toasted to order. Our chicken melts. Flame grilled chicken. Melted cheese. Flavor packed toppings. All stuffed into toasted focaccia. Prefer veggie? Our paneer melts bring the same flame grilled magic. No compromise on taste. And you choose your filling. Smoky barbecue cheese melts or fresh tomato salsa cheese melts. Either way, it's proper flavor. Pepe-licious. Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way. New melts, only at Pepe's. Need a website for your business? Whether you're service-based or want to sell online, PageCrowd builds professional websites from just £199. Fast, mobile-friendly, and designed to help you win more customers. We're UK-based. Call 0208-242-4700 or visit pagecrowd.co.uk today.
1: Dil Chori Sada Ho Gaya is back. Pepe's Piri Piri presents an unforgettable evening with the king of soulful Punjabi, Hans Raj Hans, live in London. The show on Saturday, the 10th of October, is at the Sofitel Hotel, London Heathrow. Doors open 6:30 p.m. Book your tickets from Eventbrite. Experience the timeless hits, the magical voice, and an evening full of emotion, nostalgia, and entertainment, supported by Madhus. Hans Raj Hans, live at the Sofitel Hotel Heathrow. Don't miss it. Radio partner Sunrise Radio, TV partner Punjab TV. Brought to you by Samara Events UK and Top Notch Studios.
4: Winner, winner, roast for dinner. This autumn at Aldi. Feed four for under £7. With British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
5: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
6: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
5: जी बिल्कुल।
7: शबनम इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
6: हाँ मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
5: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
6: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
5: बिल्कुल आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
8: गोल्ड बैंक।
6: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
5: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
2: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
9: Just dropped the brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members only deals, personalized rewards and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles.

0: ZTVHD पर देखिए तुम से तुम तक।
1: मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया सजाने में जो मजा आता है ना, और किसी चीज में नहीं आता।
2: ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई।
3: मीरा ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा तुम उठ क्यों नहीं रही? आंखें खोलो मीरा।
0: क्या होगी मीरा की अगली साजिश?
3: अनु तुम प्लीज जल्दी आ जाओ।
2: क्या हुआ यश भैया?
3: मीरा आंखें नहीं खोल रहे।
0: अनु और आर्यवर्धन क्या मीरा के हर झूठ और साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? देखिए तुम से तुम तक आज शाम 6 बजे ZTVHD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Winner, winner, roast for dinner this autumn at Aldi. Feed 4 for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
5: Just dropped. The brand new TUI Smiles Rewards Club. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. At all and after protected. T's and C's apply. See website for details.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: I can't believe it. Max has asked me to move in with him.
8: I mean, you practically live with each other already, but that's great. Did you hear that, Joe?